बदले लोग बदले सड़कें बदले लड़के सेम लफड़े एक सिकंजा जो सबके सर पे और मैं लफंगा जो सबके घर पे पहुंचे रात के 9 बजे मैं इतना डिफरेंट सब ऑड लगे पीले नीले डॉट्स पॉप करें मैं हट के सोचूं और सोचूं दर्द में घर के कोने को फिर उलट दें डर है नस में घर से लड़के दूर हूं कई साल से सर के दर्द में और फिर

टाटा। मैं हूँ या नहीं ये किसको पता, जरूरी नहीं मैं सबनों दिखा, कंफ्यूज नहीं के व्यूज ले, मैं कुछ भी करा, मैं कुछ भी करा।